तुर्की की हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने कहा है कि तरक्याती रास्ता मंसूबा, जिसका मकसद इराक के जरिए खलीज को आलमी मंडियों से जोड़ना है, मुसलसल आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने एक दहशतगर्दी से पाक तुर्की और दहशतगर्दी से पाक खित्ता बनाने के लिए अंकरा के अज़्म को भी दोहराया है। यूरोपीय यूनियन ने स्पेन और फ्रांस में जंगलात की आग पर काबू पाने में तुर्की के तआवुन का शुक्रिया अदा किया है। यूरोपीय यूनियन के डायरेक्टरेट जनरल बराए शहरी तहफ़ इंसानी इमदाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस मामले पर एक बयान जारी किया। पोस्ट में जोर देकर लिखा गया है कि तुर्की ने स्पेन और फ्रांस में लगी जंगलात की आग पर काबू पाने में मदद के लिए फायर फाइटिंग तैयारी भेजी हैं। तुर्की जबान में दर्ज पैगाम में शुक्रिया तुर्की लिखा है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने भी फ्रांस में आग के खिलाफ जद्दोजहद में मदद के लिए भेजे गए दो फायर फाइटिंग तैयारों के लिए तुर्की में यही पैगाम शेयर किया कि तुर्किया तुर्की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी और सऊदी अफवाज ने 28 जुलाई को इराक में हमले किए, जिनमें उन ईरान नवाज ग्रुपों को निशाना बनाया गया जिन पर अमरीकी अफवाज और सऊदी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों का इल्ज़ाम है। सेंटकॉम ने बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की पासदाराने इनकलाब की जानब से मुबैना तौर पर किए जाने वाले 30,000 ड्रोन हमलों की कोशिशों के बाद किया गया और मजीद कहा गया कि वो ड्रोन हमले नाकाम रहे थे। सऊदी अरब ने अलग से एक बयान में कहा है कि ये हमले अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर की दफ़ा 51 के तहत किए गए, जो अपने दिफा के हक को तस्लीम करता है। मकामी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में ईरान नवाज अल हशद अल शाबी को निशाना बनाया गया और इराक के जनूबी सूबों बसरा और वासित में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में फिलिस्तीन के सफ़ीर रियाज मंसूर ने मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद के दरमियान गैर कानूनी इसराइली आबादकारों को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा किया है और बैनुल अक़वामी शहरी तहफ़ फराहम करने पर जोर दिया है। उन्होंने सलामती काउंसिल को बताया कि इसराइली आबादकारों को गैर मुसल्लह किया जाना चाहिए ताकि उन्हें लोगों को खौफजदा करने से रोका जा सके। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आबादकारों अकाबिर सफाज के हाथों रोज़ाना फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, जैसे उनकी ज़िंदगियों की कभी कोई अहमियत ही नहीं थी। मंसूर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इंतखाबी फ़ायदे के लिए मज़ीद नौ आबादियात, मज़ीद बेदखली और मज़ीद नकल मकानी की पॉलिसी पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसराइली अफवाज की पुश्त पनाही के साथ गैर कानूनी आबादकारों के तशद्दुद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अराजी पर कब्ज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस के सरहदी इलाके बेलगोरोद में 3 अफराद हलाक, जबकि एक बस पर हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। रूसी वजारत खारजा ने इन हमलों की मजम्मत की है। इलाके हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि सरहद के नज़दीक एक गांव में एक दुकान पर ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। इलाके के मरकजी शहर बेलगोरोद के बाहर एक कस्बे पर हमले में एक और शख्स हलाक हो गया। यूक्रेन की सरहद के करीब एक बस पर फायरिंग हुई और जख्मियों में से एक के अलावा तमाम को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। मास्को ने यूक्रेन पर मुख्तलिफ रूसी इलाकों में बसों पर मुनज़्ज़म हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि ताज़ा तरीन हमला इस बात की निशानदेही करता है कि यूक्रेन जुनूनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अवामी नकलो हमल से महाज पर बढ़ती हुई नाकामियों का बदला ले रहा है। रूस के ज़ेर कंट्रोल मशरक़ी यूक्रेन के दुनेस्क इलाके में एक बस पर मुबैना यूक्रेनी ड्रोन हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। रूसी हुकाम ने गुज़श्ता माह भी बेलारूसी बच्चों को तातीलाती मकाम ले जाने वाली एक बस पर हमले के जिसमें एक खातून हलाक और 6 बच्चे जख्मी हुए थे, उसका इल्ज़ाम यूक्रेन पर आयद किया था। ताहम यूक्रेनी फौज ने इस इल्ज़ाम को गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम की तैयारी के लिए इजाज़तनामा देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया है जो उन्होंने इस माह के अवाल में नेटो इजलास के दौरान तुर्क दारुलहुकूमत अंकारा में शुरू की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने इसे अंकारा में शुरू किया था ताकि यूक्रेन को पैट्रियट की तैयारी के लिए इजाज़तनामा जारी किया जाए। ये अहम है क्योंकि हमें इसकी अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस दरख्वास्त पर इत्तफाक किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज सदर ट्रंप के साथ हमारी बातचीत बड़ी मुफीद रही, उन्होंने हमें इजाज़तनामा देने की हामी भर ली है। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि बाद अज़ां उन्होंने अमरीकी दिफाई कंपनियों के अहदेदारों से मुमकिन मुश्तरक पैदावार पर बातचीत के लिए मुलाकातें की।
میں امید کرتا ہوں کہ ہم مشترکہ پیداوار کریں گے، یہ انتہائی

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: वेनेजुएला की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि काराकास ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची के उन बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ईरान के सफीर को तलब किया है, जिन्हें वेनेजुएला ने तहजीब से गिरे हुए और नामुनासिब करार दिया है। उमर खारजा ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि वेनेजुएला में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर को वेनेजुएला के इदारों और हुक्काम के खिलाफ किए गए हद तक आमेज और नामुनासिब अल्फाज पर एहतजाजी मरासला देने के लिए वेनेजुएला की वजारत खारजा में तलब किया गया था। वेनेजुएला के हुक्काम ने यह वाज़ेह नहीं किया कि एहतजाज किस मखसूस बयान पर किया गया। तहम इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली वीडियो से मालूम होता है कि अब्बास अराकची ने अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात का जिक्र करते हुए मुबैना तौर पर कहा था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है जहां एक शख्स को निशाना बनाया जाए और बाकी सब खौफजदा होकर पीछे हट जाएं। ये सफारती तनाज़ा दोनों तेल पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान एक नायाब खिंचाव का इशारा हो सकता है, जिन्होंने 1999 में साबिक आन जहानी सदर ह्यूगो शावेस के बरसर इकतदार आने के बाद से करीबी सियासी और इकतसादी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। अमरीका मुखालिफ बयानी के लिए मशहूर काराकास और तहरान ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में तवानाई, कानकनी, सेहत और तालीम के शोबे में माहिदों के जरिए अपने बाहिमी तआवुन को वसअत दी है। यूरोपीय कमीशन ने एक बार फिर जोर दिया है कि तमाम रियासतें जेर इल्तवा गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल दरामद समेत बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत के साथ मुकम्मल तआवुन करें। जबकि इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का तैयारा दो बार कई ICC रुकन रियासतों की फिजाई हदूद से होता हुआ अमरीका की जनब जा रहा था। मंगल को यूरोपीय कमीशन की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान अनवार अल अनूनी ने नेतन्याहू के मखसूस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया और कहा कि ICC से मुतलिक कोई भी मखसूस सवाल बराह रास्त ICC से पूछा जाना चाहिए। तहम उन्होंने यूरोपीय यूनियन के मौकफ को बैरूए कार लाते हुए वाजे किया कि हम बतौर यूरोपीय यूनियन ICC और रोम इंस्टीट्यूट में दर्ज उसूलों की हिमायत

का तैयारा गुज़िश्ता पीर के रोज़ वाशिंगटन डीसी जाते हुए यूनान, इटली और फ्रांस की फ़िज़ाई हदूद से गुजरा, जो कि रोम कानून असासी की रुकन रियासतें हैं। ये परवाज बड़ी हद तक उस गुजरगाह की अक्कासी करती है जिसे नेतन्याहू ने 28 दिसंबर 2025 और 10 फरवरी को अमरीका के अपने सबका दौरों के दौरान इख्तियार किया था। ICC ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वजीर दिफा याओ गैलन के खिलाफ गजा में इसराइल के मुबैना नस्ल कुशी के दौरान किए गए जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए हैं। अमरीका ने चीन के तैयार करदा इंसान नुमा रोबोट्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। अमरीका ने कौमी सलामती के खतरात का हवाला देते हुए गैर मुल्की साख्ता नए इंसान नुमा रोबोट्स की दरामद पर पाबंदी लगाई है। US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC के फैसले के मुताबिक नए इंसान नुमा और चार टांगों वाले रोबोट्स के साथ साथ अहम पावर कन्वर्टर्स के मुल्क में दाखिले को भी रोक दिया गया है। हुकाम ने खबरदार किया है कि आलात जासूसी और साइबर हमलों का खतरा रखते हैं। इस फैसले पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए चीनी इंतजामिया ने वाशिंगटन पर तिजारत को सियासत ज़दा करने का इल्ज़ाम लगाया और ऐलान किया कि इस हवाले से ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। हालिया अयाम में चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों ने कारखानों और घरेलू इस्तेमाल के लिए इंसान नुमा रोबोट्स की तैयारी में तेज़ी से तरक्की करते हुए आलमी मंडी में नुमाया मकाम हासिल किया है। दूसरी जानब वाशिंगटन इंतजामिया मसनू जहानत और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अपनी कौमी सलामती और मकामी पैदावार के तहफ़ के बहाने पाबंदियों में इजाफा कर रही है। फ्रांस के जनूब मगरबी इलाके जेरोन में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी जंगलाती आग दर्जा हरारत में दोबारा इजाफे के साथ ही दीगर मकामात पर भी भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मस्कुरा इलाके में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लगने वाली आग की वजह से 70,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि फ्रांस भर में हालिया दिनों में निकाले जाने वाले अफराद की मजमू तादाद 2,20,000 से तजावुज कर गई है। स्पेन और पुर्तगाल में भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जनूबी ऑस्ट्रेलिया के हुकाम ने बुध को कहा है कि रियासत में मजीद 11 मुश्तबा वाकयात की निशानदेही के बाद H5 नस्ल के बर्ड फ्लू के मकामी तौर पर फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। ऑस्ट्रेलवी TV ने रिपोर्ट किया कि उनमें से 7 वाकयात रियासत के जनूब मशरक में और 4 कैंगरू जजीरे पर पाए गए हैं, जबकि हुकाम अभी हतमी टेस्टिंग के नतज के मंतज़र हैं। जनूबी ऑस्ट्रेलिया की वजीर बरए प्राइमरी इंडस्ट्रीट क्लेयर स्क्रियोन ने कहा है कि इस वायरस के मकामी फैलाव का कवी इम्कान है। रियासती हुकूमत को उम्मीद है कि बीमारी के जंगली परिंदों के दरमियान मकामी तौर पर फैलने की तस्दीक के लिए कॉमनवेल्थ साइंसी और सनती तहकीकती इदारे के लिए लैब टेस्ट के नतज बुध या जुमेरात तक आ जाएंगे। सिक्रियोन ने कहा कि हमने मुशाहिदा किया है कि दुनिया भर में H5 बर्ड फ्लू को रोक नहीं सकते और दुनिया के हर दूसरे बर आज़म में बिलाशुबा मकामी तौर पर यह मुंतकली हुई है। सिक्रियोन ने मजीद कहा कि रियासत या मुल्क के दीगर हिस्सों में पोल्ट्री फार्म्स में H5 बर्ड फ्लू की कोई निशानदही नहीं हुई। और एक खबर के मुताबिक इजाफी ईंधन टैंक के हामिल एक तैयारे ने पैसिफिक और अटलांटिक समंदरों के ऊपर से गुजरते हुए 23,075 किलोमीटर का रास्ता बिला किसी वक्फे के 24 घंटे और 24 मिनट में तय कर लिया है। यह परवाज़ तुलोज में वाकई कारखाने में लैंड करने के साथ मुकम्मल हुई। बताया गया कि इस परवाज़ ने 2005 में बोइंग 777-200LR के साथ हांगकॉन्ग से लंदन तक पैसिफिक रास्ते 22 घंटे 42 मिनट का सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रवास ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 का कहना है कि इस सफ़र प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मॉनिटर किए जाने वाली दूसरी परवाज़ है और अंदाजन 36 लाख अफराद ने तैयारे के रूट को बराह रास्त देखा। इसके साथ ही सदाया तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

सामिन, एक बंदरगाह का क्या फ़ायदा होता है? जहाज़ आते हैं जाते हैं, सामान उतारा जाता है, ड्रम कतारों में रखे जाते हैं और खाते बंद कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बंदरगाह महज तिजारत का एक आम पड़ाव होती है, लेकिन कुछ बंदरगाहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मालो असबाब ही नहीं बल्कि इंसानियत का मुश्तरक हाफजा भी मुंतकिल करती हैं। उनकी लहरें सिर्फ जहाज़ों को ही नहीं बल्कि तारीख के धारे को भी रास्ता दिखाती हैं। आज हम अपना रुख बाहर रूम की नमकीन हवा की तरफ कर रहे हैं। हम एक ऐसे मगरूर साहिल की तरफ जा रहे हैं जिसने हज़ारों सालों से अजीम सल्तनतों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और जो मशरकी बाहर रूम के अहम तरीन रास्तों में से एक रहा है, गजा की तरफ। आज टेलीविज़न की स्क्रीनों पर अक्सर सिर्फ जंग, मुहासरे और तबाही के हवाले से याद किया जाने वाला ये शहर दर हकीकत इंसानी तारीख के कदीम तरीन, गहरे तरीन और अमीर तरीन तजारती मराकज़ में से एक है। आइए आज की धुंध को थोड़ा सा छांटते हैं और गजा की 5000 साल कहानी का दरवाज़ा मिलकर खोलते हैं। अब हम अपने जहन में एक नक्शा बनाते हैं। एक तरफ मिस्र की कदीम सरजमीन, दूसरी तरफ अरब और मेसोपोटामिया, शुमाल में शाम, अनातोलिया और बहरा रूम के रास्ते यूरोप। इन्हीं तमाम रास्तों के गठजोड़ पर मुश्तमिल इस तंग साहिली पट्टी पर एक ही शहर उभरता है, गजा। गजा सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं था। यह कदीम दुनिया के अहम तरीन ज़मीनी तिजारती रास्तों में से एक, विया मारिस यानी समंदरी रास्ते का सबसे अहम स्ट्रेटजिक पड़ाव था। मिस्र से शुरू होने वाला यह कदीम रास्ता गजा से होता हुआ शाम, अनातोलिया और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इसीलिए इस शहर की न सिर्फ बंदरगाह बल्कि उसके रास्ते भी कभी खाली नहीं रहे। जोग्राफिया ने गजा को एक ऐसा मकाम दिया था कि जो ताकत उस पर कंट्रोल हासिल करती वो मशरक और मगरब के दरमियान तजारत के अहम तरीन चौराहे को भी कंट्रोल करती थी। यही वजह है कि तारीख में कई रियासतें और सल्तनतें इस शहर पर कब्जा करना चाहती थीं।

की गाड़ियों की नेविगेशन या तस्वीरी तज्जिया जैसे शोबों में मस्नूई ज़हानत से लेस निज़ाम इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज हम जो तब्दीली देख रहे हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मरहले को जाहिर करती है। मस्नूई ज़हानत अब इनफरादी निज़ामों के अंदर काम करने वाली एक मददगार टेक्नोलॉजी रहने के बजाय मजमूई ऑपरेशंस के तालमेल को तेज़ करने वाली एक अहम तह में तब्दील हो रही है। वो याद दिलाते हैं कि इससे पहले यूक्रेन की जंग में मस्नूई ज़हानत पर मबनी मस्नूआत का इस्तेमाल मैदान जंग और महाज के पीछे दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था। अब वो इस बात पर जोर देते हैं कि मस्नूई ज़हानत बराह रास्त फैसला साजी के पैरामीटर्स के मरकज में आ चुकी है और उसने इन अमल को बेपनाह रफ्तार दी है। मस्नूई ज़हानत महज एक मददगार उनसुर नहीं रही। अल्बर ओजबिलन ठीक इसी नुक्ते पर एक बहुत ही कीमती तारीफ बयान करते हैं। इसलिए अब हमें मस्नूई ज़हानत की मदद से लड़ी जाने वाली जंग के बजाय मस्नूई ज़हानत पर मबनी जंगी हालात के बारे में बात करनी चाहिए। फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, करीब माजी में इंटेलिजेंस के तज़ियाती अमल कुछ ऑटोमेशन एप्लीकेशंस के बावजूद इंसानी मेहनत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात और फील्ड रिपोर्ट्स का जायज़ा मुख्तलिफ टीमों के जरिए लिया जाता था। इस डेटा को एक जगह जमा करके एक बामानी तस्वीर बनाने में वक्त लगता था। आज मस्नूई ज़हानत इस बहुत बड़े डेटा पोल को बयाक़वक़्त स्कैन और लिंक करके फैसला साजों के सामने बहुत तेजी से एक वाज़ह तस्वीर पेश कर सकती है। मस्नूई ज़हानत की तरफ से अमल को तेज़ करने का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि जंगें भी उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि ये ऐसे नए पेचीदा मसाइल और जंग के फैलने के ख़तरात का बाइस बन सकती है जिनका पहले कभी तजुर्बा नहीं किया गया। मस्नूई ज़हानत मैदान जंग में क्या कुछ कर सकती है, यहाँ ओजबिलन मामले को मज़ीद वाज़े और ठोस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि मस्नूई ज़हानत के जरिए दुश्मन के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की नकलो हरकत की मॉडलिंग की जा सकती है, या फिर फिजाई दिफाई निज़ामों की तैनाती, फौजी तनसीबात में सरगर्मियों की शिद्दत, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक नशरियात की सरगर्मियों में तब्दीलियाँ, या कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की मवासलाती शिद्दत जैसे इंतहाई स्ट्रेटजिक मामलों में मस्नूई ज़हानत अहम किरदार अदा कर रही है। सैटेलाइट तस्वीर, ड्रोन्स के जरिए की जाने वाली जासूसी, ओपन सोर्स स्कैनिंग और मुख्तलिफ सेंसर से हासिल होने वाले सिग्नल्स पर मुश्तमिल बड़े डेटा सेट्स, जब इन सब का मस्नूई ज़हानत से तज्जिया किया जाता है तो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग और मैदान जंग में होने वाली तब्दीलियों की निगरानी दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है। ओजबिलन कहते हैं कि यह सूरत हाल रिवायती जंग के अंदर एक नई गैर मुतमासिल ताकत पैदा करती है जो फरीक डेटा को ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है, उसे जंग की रफ्तार का तायुन करने का फ़ायदा हासिल होता है। जो इस तब्दीली को सही तरीके से समझेगा वही आगे बढ़ेगा। यकीनन मैदान जंग में मस्नूई ज़हानत का इस हद तक नुमाया होना कुछ खदशात और अगर वाज़े अल्फाज में कहा जाए तो खौफ भी अपने साथ लाता है। अल्पर ओजबिलन के मुताबिक असल मामला खौफजदा होना नहीं बल्कि इस तब्दीली को सही तरीके से समझना और संजीदगी से उसके लिए तैयार रहना है। ओजबिलन इस बात का जिक्र करते हैं कि आज मस्नूई ज़हानत एक क़ुव्वत को कई गुना बढ़ाने वाला अंसर है। यह अंसर जंगों की रफ्तार, फैसला साजी के चक्करों और इंटेलिजेंस के मुकाबले को बुनियादी तौर पर तब्दील करता रहेगा। हम इस नए दौर के अभी बिल्कुल आगाज में हैं जो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है।

तो क्या तुर्की मैदान जंग में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले, जिसके बारे में हम सब मुतजस्सिस हैं, ओज़बिलन बताते हैं कि तुर्की की दिफाई सनत में तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स वगैरह और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के पास मौजूद सेंसर नेटवर्क्स एक बहुत ही अहम बुनियाद फराहम करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसके बाद का असल नाजुक मामला कुछ और है, और अपनी बात को यूं मुकम्मल करते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी चीज जम करना है। इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर करना जरूरी है।

है कि इंफ्रादी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सेंसर्स को किनारों और मरकज दोनों जगहों पर मस्नूई जहानत पर मबनी तज्जिया और फैसला साजी की तहों के साथ कितनी तेजी से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मुस्तकबिल के मैदान जंग में फायदा सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की तादाद और उनकी इकसाम से नहीं होगा, बल्कि असल बात यह होगी कि उन प्लेटफॉर्म से आने वाले डेटा को कौन ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी से समझकर फैसले में तब्दील कर सकेगा। इस सवाल का जवाब हमें यह भी बताएगा कि नए दौर में कौन से ममालिक सबसे आगे होंगे। मैदान जंग में मस्नूई जहानत का किरदार तेजी से बदल रहा है और ये वाजह है कि जो लोग इस तब्दीली को सही तरीके से समझेंगे मुस्तकबिल में फायदा उन्हीं का होगा। एक और पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।